सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज की इस प्रातःकालीन सभा में मैं हूं आपके साथ रेडियो उद्घोषिका प्रीति। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि तदानुसार 9 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है।

0: हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

मानव जीवन केवल दैनिक कार्यों को पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म मंथन और प्रेम के अनूठे संगम को समझने की यात्रा है। इन दोनों के बिना जीवन का वास्तविक अर्थ अधूरा और सूना रह जाता है। आत्म मंथन का अर्थ है अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं का तटस्थ होकर मूल्यांकन करना। यह प्रक्रिया हमें अहंकार से दूर कर विनम्र बनाती है। एक शांत मन ही सही और गलत का भेद समझ सकता है। जिसे आत्म मंथन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम एक भावना नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। आत्म मंथन हमें स्वयं से जोड़ता है तो प्रेम हमें पूरी सृष्टि से जोड़ता है। ज्ञान, ज्योति,

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है।

जिंदगी ईश्वर का उपन्यास है, ईश्वर को उसे लिखने दीजिए, हमें बस अपना कर्म सही तरीके से करना है।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे रविंदर साठे और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:05 पर आप सुनेंगे सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम। 7:35 का समय रहेगा कार्यक्रम लोक संसार का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हिमाचल डायरी का आज का अंक। सुबह 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। सुबह 10:00 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। 10:15 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम झूमते तराने। 10:45 पर आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम। दिन के 11:00 प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 देवधरा के गीत और 12:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। दोपहर 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 3:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। शाम 5:00 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युव मंच शाम 5:30 पर। शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सफर सुहाने गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। शाम 7:00 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे देश गान। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, विषय रहेगा आर्थिक विकास। शाम 8:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। रात्रि 10:00 साहित्य जगत और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। देर रात 11:00 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये दी जानकारी हमने आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर

केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7:06 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर प्रीति। लेकर आई हूं आपके लिए ढेरों सारी जानकारियां और मनोरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज के इस विचार के साथ। तो श्रोताओं, आज का विचार है, बदला लेने की बजाय बदल के दिखाएं। प्रतिशोध की अग्नि हमेशा विध्वंस लाती है, जबकि स्व परिवर्तन की लगन संसार में एक सुंदर बदलाव लाती है। तो श्रोताओं, यही कहूंगी, जैसे खुशबू है इन झाड़ फूल और पत्तियों में, हमें भी भरनी है अपने अपने किरदारों में। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती। यहाँ जो कुछ भी बोया जाता है बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह अच्छे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। तो आपने अपने दिल में किन चीजों को पनपने देना है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जीवन वह है जो हम इसे बनाते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का विचार और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं इस विचार के साथ और आप सभी श्रोताओं की रेडियो सेट्स पर भेजते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल।

0: द्वार, सुखू सरकार सबके द्वार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, और वर्तमान की दुनिया की तरफ से थोड़ा सा हटके हम चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और बात करते हैं आपसे आज के दिन इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो बात करें 9 जून सन 1720 की, तो आज ही के दिन स्वीडन और डेनमार्क ने तीसरी स्टॉकहोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन सन 1752 में फ्रांसीसी सेना ने त्रिची नोपोली में ब्रिटिश के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बात करें 9 जून सन 1940 की, तो नॉर्वे के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। और आज ही के दिन सन 1956 में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप से 400 लोगों की मौत हो गई थी। 9 जून सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था आज ही के दिन। सन 1980 में अंतरिक्ष यान सोयोज T2 पृथ्वी पर लौटा था। बात करें 9 जून सन 2001 की, तो भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति की दिग्गज जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का युगल खिताब जीता था आज ही के दिन। और श्रोताओं, आज के दिन शहादत हुई थी, आज बलिदान दिवस है बिरसा मुंडा का। जनजातीय जननायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, जिनकी आज शहादत है, 9 जून को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में रांची जेल में उनकी शहादत हुई थी। अंग्रेजों द्वारा उनके ऊपर 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 3 फरवरी 1900 को चक्करधरपुर के जमकपाई के जंगलों में उन्हें विश्वासघात के जरिए सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने आदिवासियों की जमीन, जंगल और अधिकारों की रक्षा के लिए उल गुलान का नेतृत्व किया था, जो एक महान विद्रोह था। उनके बलिदान के बाद आदिवासी आंदोलन भले ही धीमा पड़ गया, लेकिन उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को सन 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा था, जो आज भी आदिवासियों की जमीन के संरक्षण का प्रमुख आधार है। उनके अदम्य साहस, समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उनकी जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उसे घोषित किया। आज भी उनके बलिदान दिवस सही दिवस को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन है।

0: शादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर

0: कर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। पहली खबर की बात करें तो 21 जून को नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए NTA ने सुरक्षा सख्त कर दी है। परीक्षा से जुड़े स्टाफ को हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन में रखा गया है। इस बार मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत वायुसेना 18 चुनिंदा लोकेशंस पर प्रश्न पत्र सुरक्षित पहुंचाएगी, जहां इन्हें केंद्रों तक भेजा जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुनेंगे अंतरिक्ष यात्री पी बालाकृष्णन नायर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। केरल में जन्मे बालकृष्णन नायर भारतीय वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील में बड़ी प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण पर जुलाई की शुरुआत में हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए मुद्दों को सुलझाने और उन्हें सुलझाने में जुटे हैं और बातचीत अंतिम दौर तक पहुँच चुकी है। ईरान और इसराइल ने संघर्ष विराम के ठीक 2 महीने बाद सोमवार को पहली बार एक दूसरे पर जमकर मिसाइल और हवाई हमले किए। करीब 8 घंटे चले संघर्ष के बाद ईरानी सेना ने हमले रोकने की घोषणा की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इसराइल भी हमले रोकने पर सहमत हो गया। टकराव ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका सीज फायर को स्थायी समझौते में बदलने की कोशिश कर रहा था। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के टेंडर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए व्यवस्था लागू कर दी है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर कार्यों के लिए कंपोजिट टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे परियोजनाओं का काम तेजी से होगा और अलग अलग विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाला समय भी बचेगा। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बड़े प्रोजेक्ट्स में अब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग निविदाएं जारी करने की जरूरत नहीं होगी। एक ही टेंडर के माध्यम से निर्माण, विद्युत और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य किए जा सकेंगे। प्रदेश में नवगठित पंचायतों के लिए जून महीना बेहद अहम रहने वाला है। एक ओर 27 जून से नई पंचायतें अपना कार्यभार संभालेंगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें 16वें वित्त आयोग की पहली किस्त प्राप्त होगी। प्रदेश का पहला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के समीप मशोबरा में प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवजीवन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा, विशेषकर चिट्टा की समस्या केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। राज्य सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवजीवन केंद्र महिलाओं के लिए अपनी तरह का एक पहला विशेष संस्थान है, जहां नशे का शिकार महिलाओं को केवल उपचार ही नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की ओर लौटने का अवसर भी मिलेगा। श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं आज की ताजा तरीन खेल खबरों से।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा।

पहली खेल खबर की बात करें तो फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 में इस बार 48 टीमें पहली बार चमचमाती ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करने वाली हैं। हर टीम की अपनी एक खासियत है, कई इतिहास बनाना चाहती हैं तो कई इतिहास दोहराने उतरेंगी। भारतीय महिला टीम ने T20 विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए वार्म अप मैच को 26 रनों से जीत लिया है। हाल ही में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंदा को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। सीएम विजय ने प्रगानंदा के साथ शतरंज भी खेला, जिसमें 20 वर्षीय यह युवा जीत गया। प्रगानंदा ने कहा, भले ही मैं जीत गया लेकिन सीएम शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में देश की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जूडो की पूरी टीम उतारने की तैयारी है। अगले माह ग्लासगो में होने जा रहे इन खेलों में 3 पुरुष और 3 महिला जूडोकाओं को ही भेजने को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी 7-7 वर्गों में जूडो टीम उतारने की तैयारी कर ली गई है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

0: आबादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

तो श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ अब आज का एक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, एक बार फिर से आपसे कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:35 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले रेडियो की दुनिया से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं हिमाचल की संस्कृति से, हिमाचल से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों से और बहुत सारी जानकारियों से जो जुड़ी होती हैं हिमाचल से। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे जून के महीने में हिमाचल में लगने वाले फलों के बारे में और साथ ही साथ कौन कौन से ट्रैक्स आप इस महीने घूमने जा सकते हैं। जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में आड़ू, खुमानी, आलू बुखारा और चेरी जैसे मौसमी फलों की मुख्य रूप से पैदावार होती है। इन फलों को बड़े बड़े शहरों और विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। आडू सोलन और सिरमौर जैसे क्षेत्रों में मई से जुलाई के बीच मुख्य रूप से इसकी फसल आती है। खुमानी की बात करें तो यह शिमला, कुल्लू और किन्नौर की घाटियों में उगने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय फल है। आलू बुखारा सोलन, मंडी, शिमला और कुल्लू की घाटियों में जून और अगस्त के दौरान मीठे और रसीले आलू बुखारे की पैदावार होती है। चेरी यह मुख्य रूप से नारकंडा, कोटगढ़ और ऊपरी शिमला के इलाकों में उगाई जाती है। इन फलों का निर्यात भी किया जाता है। इन स्टोन फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ, जो कि जल्दी खराब होने की इनमें क्षमता होती है, इसलिए इन्हें तुड़ाई के तुरंत बाद कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में एयर कंटेनरों और रेफ्रिजरेटर ट्रकों द्वारा भेजा जाता है। विदेशी बाजारों में इनकी प्रमुख मांग रहती है और इनके कई प्रोसेस्ड उत्पादों का निर्यात अधिक रहता है। हिमाचल प्रदेश के खुमानी, चेरी, आडू से बने जैम, चटनी और जूस की बड़ी मात्रा बाहर के देशों में भेजी जाती है। हिमाचल में जून में लगने वाले फलों में काफल, जो कि हिमाचल के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय छोटा रसीला फल है, जो मुख्यतः अप्रैल से जून के बीच पककर तैयार हो जाता है। यह खट्टा मीठा फल विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। जून के महीने में हिमाचल के मध्यम और निचले इलाकों में आड़ू की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यह एक रसीला और स्वास्थ्यवर्धक फल है। इसके साथ बात करें सेब की, तो सेब का मुख्य सीजन जुलाई से अगस्त में होता है, लेकिन निचले क्षेत्रों में गाला और टाइड में

जैसी कुछ शुरुआती किस्में जून के अंत तक पकने लगती हैं। ये सभी फल हिमाचल के स्थानीय किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो गर्मियों में देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात सेब का किया जाता है। इसे राज्य की आर्थिकी का एक मुख्य आधार माना जाता है। इसे भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है। कुल फल उत्पादन का बड़ा हिस्सा देश के विभिन्न हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाता है। और अब जो स्टोन फूड फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है और उन्हें भी बाहर निर्यात किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां साझा कर रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संसार. श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं इस जून के महीने में हिमाचल प्रदेश के ट्रैकिंग क्षेत्रों के बारे में, जहां पर आप ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जून का महीना हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है. इस समय आप बर्फ से ढके रास्तों और हरी भरी वादियों दोनों का अनुभव एक साथ कर सकते हैं. अपनी सुविधा और अनुभव के स्तर के आधार पर आप इन ट्रैक्स पर घूमने जा सकते हैं. आसानी और शुरुआती स्तर के ट्रैक्स के लिए आप त्रियंड ट्रैक, जो मैक्लोडगंज से शुरू होने वाला सबसे लोकप्रिय ट्रैक है, इसे पूरा करने के लिए 1 से 2 दिन लगते हैं और यहाँ से धौलाधार रेंज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है. प्रशांत लेक ट्रैक मंडी के पास स्थित है और यह ट्रैक घास के मैदानों और पाइन के जंगलों से होकर गुजरता है. यहाँ एक तैरता हुआ टापू वाला प्राचीन मंदिर भी है. बिजली महादेव ट्रैक कुल्लू घाटी में स्थित यह ट्रैक आसान है, जो हरे भरे जंगलों और शानदार नज़ारों से भरा हुआ है, जो इस जून के महीने में आप इस ट्रैक पर भी जा सकते हैं. मध्यम स्तर के ट्रैक्स की बात करें तो हाम्टा पास ट्रैक, जो मनाली से शुरू होकर स्पीति घाटी तक जाने वाला ट्रैक है, ये सबसे बेहतरीन है. इसमें आपको एक तरफ कुल्लू की हरियाली तो दूसरी तरफ स्पीति का बंजर और सूखा नज़ारा देखने को मिलता है. भृगु लेक ट्रैक मनाली में स्थित यह 4 दिन का ट्रैक है, जो खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदानों से होकर गुजरता है. इसके साथ ही बात करें करेरी लेक ट्रैक के बारे में, जो धर्मशाला के पास ताज़े पानी की झील है, जो कि एक चट्टानी रास्ते से होकर गुजरती है. यहाँ जून का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है. और कुछ कठिन साहसिक ट्रैक अगर आपने एक्सप्लोर करने हो तो आप जा सकते हैं पिन पार्वती दर्रा. एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह 10 दिन का बेहद रोमांचक ट्रैक है, जो कुल्लू को पिन वैली से जोड़ता है. बुरान घाटी ट्रैक बरुआ गांव में उतरने वाला यह ट्रैक जून में हरा भरा और रोमांच से भरा होता है, जिसमें बर्फ के मैदान और फिसलन भरी ढलानें भी शामिल हैं. इंद्रहार पास ट्रैक मैक्लोडगंज से शुरू होने वाला यह ट्रैक धौलाधार पर्वतमाला को पार करता है और यहाँ से पीर पंजाल रेंज के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं. इन ट्रैक्स का चयन आप अपने फिटनेस, अपने उपलब्ध समय के आधार पर आप कर सकते हैं. और जब भी आप ट्रैक्स पर घूमने जाएं तो उससे पहले वहाँ की जानकारी पूरी जुटा लें, मौसम की जानकारी अच्छे से हासिल कर लें, और फिर इस तरह के खूबसूरत ट्रैक्स जो कि हिमाचल में स्थित हैं, आप इनमें अपने स्तर पर घूमने जा सकते हैं. जो कि कुछ हमने आपको एक सामान्य आसान शुरुआती स्तर के ट्रैक्स के बारे में जानकारी दी, मध्यम स्तर के ट्रैक्स के बारे में बात करी, और जो साहसिक ट्रैक्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी. तो इस जून के महीने में आप इन ट्रैक्स पर, इन खूबसूरत जगहों पर घूमने जो हैं वो जा सकते हैं. तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में एक और गीत.

लोक संसार कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। श्रोताओं, अब रूबरू करवाते हैं आपको हमीरपुर जिले से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात करें तो सोमवार को जिला मुख्यालय में मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम विषय पर विशेष कार्यक्रम जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आधारभूत ढांचे के विकास, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर मजबूती से पहचान हासिल की है। इस मौके पर सेनानिवृत्त कमांडर विजय सिंह और सेनानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने सहवक्ता के रूप में अपने विचार रखे और विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति पर चर्चा की। द्योठित स्थित सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिन भर में लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेका। मंदिर न्यास में एक ही दिन में कुल 34,73,011 रुपये का चढ़ावा दान जो है वो प्राप्त हुआ।

अगली खबर की बात करें तो जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों के तहत तहसील कार्यालय टौणी देवी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जनगणना कार्य से जुड़े पर्यवेक्षकों एवं गणनाकारों ने भाग लिया। परीक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया तथा आवश्यक पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही व्यावहारिक अभ्यास और प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार टौणी देवी सौरभ ने पर्यवेक्षकों एवं गणनाकारों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो भीषण गर्मी के बीच सोमवार को जिले में एक साथ तीन अलग अलग जगहों पर जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आई, जिसमें लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई। सबसे अधिक नुकसान सोहारी के समीप मंडियारी जंगल में हुआ, जहां रविवार देर रात आग लगी। लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है और करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति बचा ली गई है। सोमवार दोपहर बाद तेज हवाओं के कारण आग फिर भड़क उठी, जिसमें वन संपदा को भारी क्षति पहुंची है। दमकल विभाग ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया और दूसरी घटना सुबह 10:30 बजे NIT हमीरपुर के गेट नंबर 2 के पास हुई, जिसमें लगभग 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने 1 घंटे में आग पर काबू किया। तीसरी घटना शाम को दुकनेहड़ी में स्थित नगर निगम कचरा ट्रीटमेंट प्लांट के समीप हुई, जहां घासानी में लगाई हुई आग जंगल तक फैलकर पहुंच गई और इस दौरान प्लांट को खतरा पैदा हुआ। नगर निगम का एक बोर्ड जलकर राख हो गया। 2 दमकल गाड़ियों की मदद से 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। तो श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ अब आज का एक कार्यक्रम लोक संसार अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है।

0: इससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवा 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशे

0: मजदूरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज डांबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh.

ये आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस अंक में हिमाचल के 3 जाबाज सैनिकों को शौर्य चक्र। हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि देश की रक्षा में हमेशा अग्रणी रहने वाली इस देवभूमि के 3 वीर सपूतों को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से नवाजा गया है। सम्मानित होने वाले जाबाजों में ऊना जिले के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, मंडी जिले के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और शिमला जिले के मेजर अंशुल बाल्टू शामिल हैं।

अगली खबर की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 नए बीटेक कोर्सेज शुरू किए हैं। इनमें क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद डाटा एनालिटिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग विद डाटा एनालिटिक्स कोर्सेज शामिल हैं। इस सत्र के तीनों कोर्स शुरू करने की योजना है। तीनों में 30-30 सीटें होंगी। इनमें JEE एडवांस की रैंकिंग के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान का दावा है कि क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक शुरू करने वाला वह देश का पहला IIT बन गया है। अगली खबर की बात करें तो देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा और रोहतांग जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद हर दिन बढ़ रही है। आलम यह हो गया है कि क्षेत्रों में पर्यटकों से पूरी तरह जैम पैक हो चुका है। इस तरह से लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि सड़कों पर गाड़ियां दौड़ नहीं रही बल्कि रेंग रही हैं। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून के लिए ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और संस्कृत कॉलेजों को अगले 30 दिनों के भीतर अपने परिसरों में स्थापित CCTV एड वीडियो सर्विलांस सिस्टम का व्यापक समीक्षा करनी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संस्थान मौजूदा निगरानी प्रणालियों के निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाए और सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ हरीश कुमार ने बताया कि यह कार्यवाही प्रदेश सरकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के जारी निर्देशों के आधार पर की जा रही है। सभी कॉलेजों को अपने नियंत्रणाधीन CCTV और VSS प्रतिष्ठानों की जांच कर या सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विनिर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। जिला हमीरपुर में तहसीलदार की एक खाली पद पर रिटायर तहसीलदार की तैनाती की जाएगी। यह नियुक्ति 70,000 रुपये मासिक मानदेय पर 3 महीने के लिए की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। जिला किसी भी तहसील में तहसीलदार के खाली पद पर इस तरह की नियुक्ति की जा सकती है। DC गंधर्वा राठौर ने बताया है कि इस पद के लिए 65 वर्ष से कम आयु के रिटायर्ड तहसीलदार 18 जून तक DC कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक ने राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष नौकरी की हो तथा उसके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। उपमंडल हमीरपुर के अंतर्गत अपग्रेडेशन के कार्य के चलते लंबड़ू डबरेड़ा सड़क पर यातायात 30 जून तक बंद किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए DC गंधर्वा राठौर ने बताया कि लंबड़ू डबरेड़ा सड़क के अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 30 जून तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक लंबड़ू सिकंदर सड़क या हमीरपुर भोरन सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

बागी फोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। स्टीवन बेन इसे गा रहे थे। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा और म्यूजिक सिद्धांत मिश्रा का। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत दिल जंगली फिल्म का नाम है।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे मेट्रो इन दिनों से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का नाम था। वरुण जैन की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सचिन जिगर का संगीत था, इंद्रनील ने इसे लिखा।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

फिल्म है सिम्बा, राहत फतेह अली खान, असीज कौर की आवाजों में ये गीत। संगीत दिया तनिष्क बागची ने।

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजकर 20 मिनट होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: यही है पीढ़ियों की पहचान, पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के दो वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुल बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजौली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के कर्तव्य, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचली स्वाद फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। आज माल रोड पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के दौरान लोगों की सुविधा के लिए HRTC स्पेशल बसें व टैक्सी चला रहा है, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ करने के बाद कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जहां ऐसे आयोजनों से अपनी संस्कृति जानने का मौका मिलता है, तो वहीं शहर में आए पर्यटक भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होते हैं।
2: अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
0: सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों से कहा है कि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं व विकासात्मक परियोजनाओं में जिला हमीरपुर के लिए अधिक से अधिक बजट लाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें। वे जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अपने स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के तहत आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में संचालित किए नशा उपचार केंद्रों और टीबी मुक्त अभियान की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने वन संपदा को आग से बचाने व मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक पौधरोपण करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के दो वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से यह साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले वयस्कों व असहाय बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष आधार अपडेट केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को आधार सेवाएं आसानी से मिल सकें। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण व

0: 5 व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्पेशल मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अभियान 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह निःशुल्क चलाया जा रहा है। रेशम कीट पालन प्रदेश सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत रेशम कीट पालन कार्यक्रम अब ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सिहारन गांव की मधु इस सफलता की एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने विभागीय जागरूकता शिविर से जानकारी लेकर सरकारी सहायता और मार्गदर्शन के साथ यह कार्य शुरू किया। मधु के अनुसार वे घर पर ही रेशम उत्पादन कर रही है और साल में 2 सीजन लगाकर वो 50,000 रूपए कमा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें रेयरिंग स्टैंड, ट्रे, नेट, रेशम कक्ष, शहतूत के पौधे और रेशम सीड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन भी लगातार दिया जा रहा है। इस योजना से न केवल आय के अवसर बढ़े हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। वर्तमान में क्षेत्र में लगभग 40 से 50 महिलाएं इस गतिविधि से जुड़ चुकी हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: लाहौल स्पीति जिले में मिनी तिब्बत के नाम से मशहूर स्पीति घाटी के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धरोहर स्थलों में शामिल ढंकर बौद्ध मठ जरूरी मुरम्मत कार्यों व उचित रख रखाव के चलते आगामी 5 दिनों के लिए पर्यटकों सहित यात्रियों के लिए बंद रहेगा। मठ प्रशासन ने इस कार्य के चलते सभी से सहयोग व धैर्य बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि रख रखाव का कार्य पूरा होने के बाद मठ को पुनः श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, HPTDC के बड़े पदाधिकारियों की सुविधाओं पर चली सुक्खू सरकार की कैंची। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पर्यटन निगम के पदाधिकारियों को नहीं मिलेगी विशेष सुविधाएं। अमर उजाला के शब्द है, निगम के होटलों में अब न 100 रुपए का कमरा, न खाने पर 50% छूट। शिमला में केवल ब्रिज, फ्लाईओवर, नई टनल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सीएम सुक्खू के 2,200 करोड़ के स्ट्राइड प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी, ADB करेगा मदद। दैनिक भास्कर की एक खबर है, नई पंचायतों की पहली परीक्षा, आयोग की ग्रांट के लिए जून में पूरी करनी होंगी शर्तें। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 3 जिलों के लिए 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज, राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के 2 वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुर बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, पिन बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
3: हस्तियों का अनमोल खजाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
3: संगीतकार सचिन देव बर्मल,
4: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म मिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राजखोसला ने अपनी शैली से हटकर टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखे।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो।

0: आर के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए लघु वार्ता।

श्रोताओं, आज की इस लघु वार्ता में आपका स्वागत है। आज की लघु वार्ता है प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक सरकारी नीति है। अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ने के लिए लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं। क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों का विस्तार करना, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

आईटीआई खोले जाते हैं। कुछ मौजूदा आईटीआई को अपग्रेड करके उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है, ताकि आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन के तहत पारंपरिक कारीगरों का समर्थन किया जाता है, जो आबादी हस्तशिल्प यानी मंस्तरीय तकनीकी कार्यों में लगी है, उनके कौशल को उन्नयन करके उनकी आय क्षमता को बढ़ाया जाता है। कौशल विकास योजनाओं में सीखो और कमाओ, नई मंजिल, उस्ताद जैसी विशेष योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है, तकनीकी प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाती है। तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन किसी भी राष्ट्र की प्रगति की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन वंचित वर्गों के युवाओं को सशक्त, कुशल और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश के आर्थिक विकास में ये समान रूप से भागीदार बने। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन समुदायों तक समान रूप से पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। सीखो और कमाओ या अल्पसंख्यकों के लिए एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार आधुनिक और पारंपरिक कौशल प्रदान करना है। नई मंजिल योजना की बात करें तो योजना विशेष रूप से मदरसों के छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं के लिए है, जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। उस्ताद, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों का पारंपरिक पैतृक कला और शिल्प का संरक्षण करना तथा कारीगरों को उन्नत प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का विकास करना है। श्रोताओं, तकनीकी शिक्षा का बहुत महत्व है। अल्पसंख्यक समुदायों का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक हस्तशिल्प और निचले स्तर के तकनीकी कार्यों से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य कुशलता और आय बढ़ाने की में मदद की जा सकती है। तकनीकी शिक्षा से प्रशिक्षित होकर युवा न केवल अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल वंचित वर्ग के युवाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन का तात्पर्य छात्रों का कार्यबल को आधुनिक विज्ञान, डिजिटल टूल्स और व्यावहारिक ज्ञान से लैस करना है। यह शिक्षा बेरोजगारी को कम कर युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार रोजगार योग्य बनाती है। रोजगार के कई नए अवसर मिलते हैं तकनीकी शिक्षा से। कंप्यूटर विज्ञान, डेटा प्रोसेसिंग, औद्योगिक डिजाइन केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर देती है। इससे छात्रों में समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास होता है। यह व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के बीच की खाई को भरती है। तकनीशियनों की भूमिकाओं के लिए उन्हें तैयार करती है, जो सामान्य शिल्प कौशल से ऊपर लेकिन सीधे इंजीनियरिंग व्यवसायों से नीचे होते हैं। भारत में तकनीकी और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं जो हैं इस समय सक्रिय हैं। तकनीकी शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित नौकरियों के लिए अकादमिक और व्यावसायिक रूप से तैयार करती है। तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर क्षेत्र में तकनीशियनों की जरूरत

जागृत होती है। तकनीकी शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा रूप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। जो शिक्षा विशेष व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है उसे तकनीकी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों और वंचित वर्गों की आय क्षमता बढ़ाना और उन्हें मुख्य धारा के रोजगार से जोड़ना है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी कौशल हासिल करने के बाद युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या अच्छी रोजगार पाने में मदद मिलती है। नई मंजिल जैसी योजनाओं के माध्यम से मदरसों और मुख्य धारा के बच्चों के बीच शिक्षा एवं कौशल का अंतर जो है वो कम किया जाता है। ऋण सहायता प्रदान की जाती है। कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के जरिए आसानी से आपको लोन भी प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों के लिए कई अवसर हैं और वो आवेदन भी कर सकते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए ही लक्षित किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें एक योग्य उम्मीदवार बनाना है। कौशल विकास योजनाओं के तहत देश के वंचित युवाओं को रोजगार उन्मुख तकनीकी शिक्षा, मुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण का बड़ा लाभ मिलता है, जिसके जरिए तकनीकी साक्षरता, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और उद्योगों की मांग के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण जो है उन्हें प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में नई मंजिल जैसी योजनाओं के तहत युवाओं को बाजार, विशिष्ट तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुक्त भी प्रदान किया जाता है। तकनीकी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कमजोर वर्ग के युवा बिना किसी बाधा के इंजीनियरिंग या तकनीकी कोर्सेज कर सकें। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगार योग्यता में भारी वृद्धि हुई है। जो युवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें तकनीकी कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़कर मुख्य धारा में लाया जाता है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण और लाभ युवाओं को दिया जाता है। युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है। तो श्रोताओं, ये दी जानकारी तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आज की इस लघु वार्ता में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुबह के 10:15 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम झूमते तराने। तो बिल्कुल झूमने के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। भेज रही हूं आपके रेडियो सेट पर ये कार्यक्रम का पहला झूमता तराना, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल से और इसको गाया है सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने।

कार्यक्रम का अगला झूमता तराना हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, और इसे गाया है श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति और केके ने, और इसे हमने लिया है फिल्म देवदास से।

आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है झूमते तराने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको भेज रहे हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, और इसे गाया है अमाल मलिक और श्रेया घोषाल ने।

कार्यक्रम की ये प्रस्तुति आपने सुनी सोनू निगम और कृष्णा नंदिनी की आवाज़ में, और इसे हमने लिया था फिल्म हमको दीवाना कर गए से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से, और इस गीत को गाया है नेहा भसीन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ झूमते तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले अपने सारे श्रोतियां दा इस कार्यक्रम च अहे बड़ा बड़ा स्वागत करदे हन। लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग तां भई इन्हां लोक गीतां च डुबने वास्ते हो ही जावा तैयार, क्योंकि बड़ी मिठास इन्हें अपने आप च घोलू हुंदी ऐ। तां कार्यक्रम दा इह पहला लोक गीत तुंदे सारे श्रोतियां दे रेडियो सैट्स पर अहे भेजा दे हन।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू एचपी यूनिवर्सिटी।

0: यूनिवर्सिटी
1: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वक्त तुहां सुणन दे अन कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग यानी लोक संस्कृति दे रंग। ये लोकगीत मिश्रण हन आंदी लोक संस्कृति दा, इत्थी दे गीत संगीत दा।

0: हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हिमाचल दे लोक गीत मिठड़े मिठड़े, इत्थों दे पहाड़ किन्नी बरसात दा मौसम, हर तरह दे पंछी पखेरू जे सहजकल दिखड़े मिल रहे हैं। प्रकृति दा नज़ारा बड़ा ही सोहना अजकल लगा दा आया।

ਭਾਈ ਸ਼ਰੋਤਾਓ, ਇਸੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਸੌਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲੋਕ ਰੰਗ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੋ ਅਨੁਮਤੀ ਨਮਸਕਾਰ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजोली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के कर्तव्य, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय

0: रूबरू होते हैं।
1: अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
0: प्रदेश के दो वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जाबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से यह साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। SDM कुनिका एकर्स ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज़ में मीरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड्स हसन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

0: देखा तो हाय देखते ही रह गए हम भी, उठाए जाम भला होश किसे वाकी है।
1: किसे पीने की हसरत थी।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम, सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन्स बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत के बोल मीरा बाई के, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मन मस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज़ में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं

0: से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है, और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

0: और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत।

देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। देवधरा के लोकगीत, ये लोकगीत समेटे हुए हैं अपने आप में हमारी लोक संस्कृति की एक बहुत बड़ी विरासत। श्रोताओं, आप सभी की रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देवधरा के गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, ये रहा कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के गीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर प्रीति। जंगल था लाल अनोखा, शौर्य जिसकी मिसाल बने, धरती माँ की गोद से उठकर अन्याय से सीधी टक्कर ले, कदम कदम पर अत्याचार थे पर मन में हिम्मत की लौ थी, आदिवासी स्वाभिमान जगाने विरसा की हर पुकार अनोखी थी, अलगुलान की तेज लपट में जग उठा हर बन हर ग्राम, शोषण की जंजीरें टूटी गूंजा विरसा का पावन नाम, कम उम्र में पर बड़ा कारनामा इतिहास में दर्ज हुआ मात, धरती आबा बिरसा मुंडा तुमसे रोशन भारत की बात। श्रोताओं, आपको बता दें आज है शहादत दिवस, महान स्वतंत्रता सेनानी जनजातीय जननायक बिरसा मुंडा का। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी शहादत हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ अलगुलान का नेतृत्व किया था, जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा की। उनकी जयंती 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज 9 जून उनके बलिदान दिवस, शहीद दिवस के रूप में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हम शत शत नमन करते हैं।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति आपने सुनी फिल्म सत्यमेव जयते से और इसे गाया है बी प्राक ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तनु वेड्स मनु से और इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

किस्से अनगिनत हैं, पर प्रेम कहानियां नहीं मिलती। अब बड़ी लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना एक पूरी जिंदगी लेकर।

ये गीत आपने सुना फिल्म सनमरे से और इसे गाया था फलक शब्बीर ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रावण से और इस गीत को गाया है रेखा भारद्वाज और जावेद अली ने।

हम ढूंढते हैं कभी लोग, कभी एकांत, कभी अपने, कभी सपने। कितना कुछ ढूंढते हुए बिता देते हैं सारा जीवन, पर नहीं ढूंढते स्वयं को कभी एक बार भी।

आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए। श्रोताओं, ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी की रेडियो सेट्स पर। इस गीत को हमने लिया है फिल्म विरासत से और इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

यादों की तलब लिए बैठे हैं हम, फिजाओं की बेचैनी लिए बैठे हैं। ख्वाहिश दीदार की चाहत भी क्या खूब है, हम उसी चाह में बेकरार रूह लिए बैठे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

चलिए, स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में, और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए इबारत हम ज़रूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी पहेलियाँ हैं, तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियाँ दे रहे हैं, उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है, और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियाँ हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी। धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए, और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है। पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है। समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है।

को मिलते हैं। पहेलियाँ ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती हैं। पहेलियाँ प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती हैं। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियाँ दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहाँ हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है, और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है। आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुँचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुँचाइएगा। हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं, तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुँचाएं और हम अगला गीत आपको पहुँचा दें, सौंप दें।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया। अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें। तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं, सुरेश वाडकर हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें। ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है। और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली। और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और इस सुंदर आगाज़ के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली पहेली है, जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है, जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कारिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह फुदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है? इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह ज़रूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहाँ तक पहुँचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी, सूरज की ज़रूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ कुछ कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियाँ लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया तीन तीतर। चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया नहीं या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, श्याम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियाँ भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार

देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं, और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था, तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख

0: लीजिए, अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कलाजोर कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं, उनका खेल बढ़ते जाए। इसका उत्तर उन्होंने बताया, स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारी एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गाँव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा, चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है? बताइएगा जरूर, इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो ज़रूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,

चूहा भी आया बंदर भी आया चुन चुन करती आई चिड़िया चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू चलते चलते मिलेगा भालू हम बोलेंगे नाचो कालू नाचो कालू नाचो कालू मुन्ना ढोल बजाएगा भालू नाच दिखाएगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, छन छन करती आई चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्ताराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज़ किस गायक की है, तो आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं, क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियाँ भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुंवारे अख्तेनी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मज़ेदार सी बातें भी आई हैं। ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, और इसका उत्तर उन्होंने दिया है सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फ़ोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगा कर नमक लगा कर हम बड़े चाव से खाते हैं, बताइएगा। तब तक सुनिए ये संदेश।
2: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
2: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही पूछी थी उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा, बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया है, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है, तो मैं पहेली बताती नहीं हूँ, मैं भी

थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में, तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरे हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफ़र। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, तो रात को सब अपने बिस्तर पर लेते लेटे लेटे पहेलियाँ बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू अब सपनों का स्वर, बताओ कौन हूँ मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूँ मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, ज़रूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज़ में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते, पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहाँ हम दो दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर, और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है। तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे। जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और हमने हमारी जो इबारत है, उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है। लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर? किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, तो हमारी श्रोता लिखती हैं, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएँ होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश माँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बड़ा मज़ा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

0: Heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
3: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर इट्स ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड Pakistani hand.

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में

0: स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए

0: इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लगें।
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं दाग फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

0: जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।
1: No.

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में, महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आईं भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का फैसला लिया है जिनकी भूमि नीलामी के खतरे में है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार पात्र किसानों के 3 लाख रुपए तक के ऋण, कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50% वहन करेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस अवसर पर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहां हर रोज ओपीडी की संख्या 1,000 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 2400 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सीटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के 2 वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से ये साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रदेश सरकार ने बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की आय में महत्वपूर्ण

0: आपकी आय को दुगना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से दो दो महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी के अंतर्गत आज सुनिए ऊना जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं राजेश कुमार और वाचक स्वर है पूनम शर्मा का।
1: ऊना जिला में पंचायती राज चुनावों के चलते गत माह चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज रहीं। जिला में स्थानीय नगर निकायों एवं सभी 249 पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों के मतों की गिनती 26, 28 और 30 मई को मतदान के तुरंत बाद की गई, जबकि नगर निकायों, जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती 4 जून को जिला के पांचों उपमंडलों के मुख्यालयों पर संपन्न हुई। ऊना, मेहतपुर, बसदेहड़ा, संतोखगढ़, दंगलखुर्द और गगरेट नगर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बहुमत जीत दर्ज करवाई, जबकि अंब और दौलतपुर चौक में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का बोलबाला रहा। जिला परिषद की 17 सीटों में से 11 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसे जिला भाजपा संगठन ने आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया। उधर गत वर्ष नगर परिषद से नगर निगम में स्तरोन्नत हुए ऊना नगर निगम और बंगाणा नगर पंचायत के चुनाव अगले चरण में होने तय हैं। नगर निगम के चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के तहत तैयार की गई मतदाता नामावली 8 जून से आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध की गई है। मतदाता नामावली में नाम शामिल करने के लिए 1 अप्रैल 2026 अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। इस माह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में उपमंडल अंब व गगरेट के विभिन्न संस्थानों में आयुष विभाग की ओर से योग व स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जहां विद्यार्थियों, कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों को नियमित योगाभ्यास के महत्व और उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी गई, वहीं आम जन को योग व स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। उपमंडल बंगाणा में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय पिपलू मेला इस वर्ष 24 से 26 जून तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रबी की फसल के उपरांत स्थानीय किसान परिवारों द्वारा उपज का कुछ भाग देवता को भेंट करने के उद्देश्य से इस मेले का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों से लोग पिपलू गांव में स्थित पिपलू मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस मेले में श्रद्धा से भाग लेते हैं। 24 जून को पारंपरिक फेरी व झंडा रस्म के साथ पिपलू मेले का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। क्षेत्र की लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले के दौरान पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिमाचली लोक कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला ऊना की सभी 249 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। इन विशेष बैठकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम सभाओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और ठोस व प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन में परिवारों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही कचरे के पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी, जैविक कचरे से कंपोस्ट तैयार करने और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इन दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर

0: आपदा नेशन टू नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
3: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का, इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
2: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएँ प्रदान करती है।
3: और उनका काम वी इन्वाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
2: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
3: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी। और देखो पानी का जो रहते कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है
0: जी
1: कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन
1: जी
0: ज़रूरी है, वैसे ही पानी ज़रूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं।
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहाँ पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है। या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदर के किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत बहुत
0: लगता है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज़ समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल।
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज़ को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक ज़रूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी हैं ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो। जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती। क्योंकि

0: जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को ज़रा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज़ को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी ज़रूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदाई होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहाँ फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने रहता है,
1: बिल्कुल
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी ज़रूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है, ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के, मतलब जो उन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो आप वही, वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने से छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
0: जी
1: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
0: बहुत
1: करिए।
0: सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
1: हाँ
0: चालू है, यहाँ
1: चल रहा है।
0: उधर काम चल रहा है उनका,
1: बिल्कुल
0: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं, आपको अपना रेजर नहीं धोना है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल
1: बिल्कुल।
0: को। इसी तरह से महिला, पुरुष, बच्चे, ये
1: और साथ ही
0: सबकी
1: हम ये
0: जिम्मेदारी
1: अगर
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी, थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
0: हाँ,
1: फेंक दिया,
0: आधा
1: जबकि
0: ग्लास
1: वो
0: पानी पीते
1: बिल्कुल,
0: हैं और आधा
1: जबकि वो
0: फेंक
1: पीने
0: देते
1: लायक
0: हैं।
1: पानी होता है, कितना कीमती पानी है, उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज़्यादा चलन है, तो वहाँ भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए, ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी, किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
1: बिल्कुल
0: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है, या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहाँ पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: तो इस तरीके की आप छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
0: क्या
1: ना। तो
0: बात है,
1: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहाँ चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहाँ सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहाँ पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज़्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: क्या हुआ जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई
1: हाँ
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला।
1: बिल्कुल,
0: दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों
1: गुठलियों
0: के
1: के
0: दाम।
1: दाम, गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए
0: जी
1: और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी चीज़ है ये।
0: तो ये तो
1: और
0: सिर्फ
1: हमारे
0: एक
1: श्रोता
0: कहावत
1: क्या
0: है,
1: कहते
0: लेकिन
1: हैं?
0: बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव
1: हाँ
0: रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है, मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो
1: हाँ
0: गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: सच में
0: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें, इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने, मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
0: हाँ,
1: कई तरीकों से
0: एक
1: कहा
0: पंथ
1: जाता है।
0: दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसका, इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि
0: जी,
1: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से, उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
1: जी
0: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्व

0: योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
1: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भी अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

प्यार हुआ है जब से।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ या 5 मिनट पहुँच रही हूँ, या अगर फ़ोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फ़ोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पर ना पहुँचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पर ना पहुँचे या फ़ोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत ज़रूरी काम आ गया, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज़, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है
1: जब बहुत
0: जिसका
1: ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना
0: बिल्कुल
1: है
0: बहानों का इस्तेमाल लोग
1: जी।
0: स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं।
1: जी
0: और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का हमारे जो श्रीमती जी हैं वो एक नंबर हैं, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती हैं मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती हैं, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी वैसे अच्छी चीज़ है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं तो
0: हमारे
1: अच्छी चीज़
0: श्रोता ने
1: है।
0: लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब
0: और
1: सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मज़ेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था, सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई, शाम को जब उसका फ़ोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज़ थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, सच कहूँ तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे.
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई.
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था. आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये भी
1: बिल्कुल.
0: बहाना बहुत होता है. तो अब बहानों की बात चली है, तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं. कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं. इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल.
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं. बस बहाने की ही बात है. मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल.
0: हैं.
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ. वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ. इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ. इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई. ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई
1: कि
0: होगी.
1: आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए.
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहाँ पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे. जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा, तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई, और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं. और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी.
1: बहुत बढ़िया बात है. और जैसे हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी, उन्होंने लिखकर भेजा है. कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे. उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी. बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी. जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे. यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं.
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा सा स्वाद होता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है. हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना.
1: बिल्कुल सुनते हैं.

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा।
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये
1: और
0: था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही हैं जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो IAS ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है, मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगू या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफ़र आया, तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं, अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि

0: कामयाब हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हेरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हम हैदराबाद गए, तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है।
0: जी
1: और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स
0: जी
1: को,
0: हाँ
1: जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: एक्सप्रेशन लाने थे
0: जी
1: और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉयट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज़ के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ जी
0: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ
0: बहुत दिल को छू लेने वाली है।
1: बिल्कुल
0: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज़ के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे

0: आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है। तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो
1: आपने कह
0: हाँ मैंने
1: दिया?
0: कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो
1: हाँ
0: डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज़्यादा हैवी है। और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं, क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ, और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हों।
0: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और
1: साहब
0: गुलाम,
1: बीबी गुलाम,
0: उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट। और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा विदु जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है। डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शेडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे, तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में। क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया, जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे, तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे। और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन, तो नेचुरली होते थे। मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे आपस में कि ऐ इस चीज़ को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया, वो आप करना चाहती
0: बिल्कुल।
1: थी।
0: जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया, बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदेव जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं। तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक एक मेच्योर औरत का रोल है। जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें। नहीं बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग। कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज़ को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं।
1: वैसे इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुजी जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात ख़त्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया, तो उनको ताजुब हुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा है तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: वाह, तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूँगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मज़ा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहना
1: यू नो, और ख़ासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?

0: नहीं मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए. अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है. तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं. एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है.
1: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान. इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा.
2: देव साहब के साथ मैं कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन मगर वेरी नाइस वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ.
2: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में. तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोके आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे. तो यूनिट पहले जा चुका था तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी हम जा रहे थे. देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ. ठीक है. हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे फॉग आने लगी पहाड़ियों में तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है? क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए. नहीं एक तो फॉग है. मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगा तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया. तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है. मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है. फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था. ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता. मैंने कहा तो मरवा दिया आपने हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है और वो जो ट्रक्स आ रही हैं तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा. अच्छा आहिस्ता चलाइए और कोई और रास्ता ही नहीं था. ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे. तो वहाँ यूनिट वाले परेशान और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे वो पहुंचे. भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे. गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुँच गए. तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था.
2: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं. कोई गाना याद करिए आप.
0: खोया खोया चांद.

0: गोविंदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही

0: आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा।
0: एग्जैक्टली
1: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला और
0: बिल्कुल सही है।
1: नीलकमल के लिए भी
0: हाँ
1: मिला।
0: बिल्कुल।
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था। वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी,
0: हाँ
1: सुनील दत्त साहब के साथ में
0: हाँ
1: आपने
0: जी।
1: किया, और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम
0: हाँ
1: किया, उनके साथ में, उनकी
0: हाँ
1: ट्रूप के
0: जी
1: साथ में जाती
0: हाँ
1: रही
0: जी
1: ना
0: हाँ जी।
1: इंडिया।
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने ही उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषे और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी उसके आउटडोर

0: खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था, और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज़ ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी
0: हाँ
1: माँ का किरदार भी अदा किया
0: हाँ बिल्कुल
1: है। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती
0: हाँ
1: थी उस समय, बाद में तो सब कुछ
0: ये अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज
1: जी
0: तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है, और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है
1: कोई
0: उनका ये।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप ज़रा बाहर ताज़ी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारो। तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसा, वो एक मीठी सी चुबन, एक
1: जी हाँ
0: उसकी,
1: जी
0: हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन।

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम. और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, देवर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता,

0: की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज़ जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
1: देव साहब के साथ में और जो आपके अनुभव, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
0: जैसे मैंने कहा वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे.
1: इतना हक
0: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर
1: और एक एनर्जी से भरे हुए
0: वो बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने जब, खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जूनियर में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी. भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम. हम आपको बता दें वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की. इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.

0: ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आवाज सुनते निखोर कार्यक्रम की प्रस्तुति है।

बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब पेश है कार्यक्रम यो मंच।

0: यो दोस्तों, संजय शर्मा का आपको प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम इस बात के साथ करेंगे कि जीवन अक्सर उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों की बदलती लय के साथ स्वयं को बदलना सीख लेते हैं। शायद यह वह सूक्ष्म ज्ञान है जो मनुष्य को केवल सफल ही नहीं बल्कि समुचित बुद्धिमान भी बनाता है। अब इस छोटी सी विचार के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: यो दोस्तों, अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, हम समय के लय को समझें। सफलता बेहद करीब होती है जब हम केवल साहस, धैर्य, बुद्धि या भाग्य का परिणाम नहीं देखते बल्कि हम अपने साहस पर आगे बढ़ते हैं। सफलता केवल साहस, धैर्य, बुद्धि या भाग्य का परिणाम नहीं होती बल्कि वह भाग्य की बदलती धड़कनों को पहचानने, स्वयं को उसके अनुरूप बदलने की कला है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव का कैदी बनने के बजाय परिस्थितियों की भाषा पढ़ना सीख लेता है वही जीवन की हवाओं को अपने पक्ष करने के काबिल बनता है और सही समय पर सही रूप में स्वयं को बदलने के लिए प्रयासरत रहता है। और युवा दोस्तों, समझदारी भी इसी के साथ है कि हम समय के नज़ाकत को समझें और परिस्थितियां जैसी बदल रही हैं उसके साथ हम अपने आप को बदलना भी सीखें, ढालना भी सीखें। हमेशा हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वो बदलाव हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें परिस्थितियों के साथ चलना है। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं, कुछ धैर्य के सहारे अपनी राह बनाते हैं, कुछ साहस और जोखिम के बल पर मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनको देखते हुए एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर सफलता का रहस्य कहाँ छिपा है? क्या वह बुद्धि में है, स्वभाव में है अथवा भाग्य के किसी अदृश्य हाथ में? इनमें से हम ये कह सकते हैं कि जीवन किसी एक नियम से संचालित नहीं होता। नदी हर जगह एक जैसी नहीं बहती, कहीं शांत होकर धरती को सींचती है, कहीं प्रचंड होकर चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती है। जो नाविक केवल शांत जल को ही जानता है वह तूफान में भटक सकता है। कहने का मायने आप समझ गए होंगे कि हमेशा जिंदगी की चुनौतियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। केवल तूफानों से लड़ना जो जानता है वह शांत धाराओं को दिशा जो वो दे रही हैं उसको वो समझ सकता है। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने स्वभाव को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लेते हैं। सावधान व्यक्ति सोचता है कि हर समस्या का समाधान सावधानी में है। साहसी व्यक्ति मानता है कि हर द्वार साहस से खोला जा सकता है, पर समय किसी एक स्वभाव का पक्ष नहीं लेता, समय बदलता रहता है।

0: उसके साथ जीवन की परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। हमने ऐसे लोगों को भी, आपने भी देखा होगा, जो एक दौर में अत्यंत सफल थे लेकिन वही तरीके दूसरे दौर में उन्हें असफलता की ओर ले गए। वहीं कुछ जो साधारण क्षमताओं वाले लोग थे वो आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने समय की धड़कन को सुन लिया था। भाग्य को लेकर भी मनुष्य अनेक भ्रम पालता है। वह अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्वयं को देता है तो असफलताओं का दोष भाग्य पर डाल देता है, किंतु जीवन में इन दोनों के बीच जो स्थिति है वो अलग है। भाग्य समुद्र की हवा की तरह है, वह हमारे अधिकार में नहीं, लेकिन अपने पलों को किस तरह दिशा में हमें मोड़ना चाहिए यह हमारे हाथ में है। जो केवल हवा पर निर्भर रहता है वह हवा बदलते ही भटक भी जाता है, और जो हवा की अपेक्षा करता हुआ बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाता। बुद्धिमानी केवल महान लोगों की नकल करने में नहीं है बल्कि उनके दृष्टिकोण को समझने में है। एक कुशल धनुर्धर दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए समय पर तीर को लक्ष्य से कुछ ऊपर साधता है। वह जानता है कि उसकी शक्ति सीमित है, फिर भी ऊंचा लक्ष्य उसे सही दिशा देता है। इसी तरह से हमें भी जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। जीवन में बड़े आदर्श इसलिए आवश्यक हैं कि वे हमें हमारी सर्वोत्तम जो संभावना है उन तक पहुंचने की प्रेरणा हमें देती हैं। सफलता समय को पहचानने की भी एक कला है, यह जानने की क्षमता है कि कब धैर्य रखना है, कब साहस दिखाना है, कब प्रतीक्षा करनी है और कब आगे बढ़ना है। जीवन अक्सर उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों की बदलती लय के साथ स्वयं को बदलना सीख लेते हैं। फिर दोहरा रहे हैं, शायद वही सूक्ष्म ज्ञान है जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बल्कि सचमुच बुद्धिमान बनाता है। और अब लेते हैं एक अंतराल, और अंतराल के बाद फिर आपसे भेंट करेंगे।
1: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: युवा साथियों, अंतराल के बाद आइए सुनते हैं एक गीत।

0: यो दोस्तों तड़फ फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ जुबिन नौटियाल की थी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। लेते हैं एक और अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: यो दोस्तों, अंतराल के बाद फिर से आपसे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे सोशल मीडिया का सही उपयोग, हमारी जिम्मेदारी कैसे तय हो। जी हाँ, आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल और तेज़ बना दिया है। यह दोस्तों, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आज हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। विशेष रूप से युवाओं के लिए तो वह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पहचान, अभिव्यक्ति और अवसर का मंच भी बन गया है। लेकिन जिस प्रकार हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है, उसी प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग भी सजगता और समझदारी की मांग करता है। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया का सही उपयोग और हमारी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। इसका सही उपयोग हमें ज्ञान, अवसर, जुड़ाव देता है, जबकि गलत उपयोग हमें भ्रम, तनाव और समय की बर्बादी की ओर ले जाता है। आइए इसके सकारात्मक पक्ष पर बात करते हैं। आज हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपने विचार और प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कई युवा आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करियर बना रहे हैं। कोई शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहा है, कोई उद्यमी बनकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया एक अवसर है यदि उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। और इसकी नकारात्मक चुनौतियों पर बात करते हैं तो इसका दूसरा पक्ष उतना ही गंभीर है। फेसबुक झूठी खबरें तेज़ी से फैलती हैं, समय की अत्यधिक बर्बादी होती है, दूसरों से तुलना करने की आदत से आत्मविश्वास कम होता है, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है। आज कई युवा बिना सत्यता जांचे किसी भी जानकारी को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे समाज में कई बार भ्रम और नकारात्मकता भी फैलती है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा हर जानकारी सही नहीं होती। युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। सोच समझ कर हम कोई बात शेयर करें, कोई भी संदेश या खबर आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता हम अवश्य जान लें। समय का सही प्रबंधन करें। सोशल मीडिया पर सीमित समय हमें बिताना चाहिए और उसे सीखने तथा विकास के लिए ही उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक कंटेंट बनाना चाहिए और उसे फैलाना चाहिए। ऐसी पोस्ट या वीडियो साझा करें जो समाज में प्रेरणा और जागरूकता फैलाएं, क्योंकि हमारे कंधों पर अब एक जिम्मेदारी है। डिजिटल शिष्टाचार भी ज़रूरी है। ऑनलाइन व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वास्तविक जीवन का व्यवहार। अपनी पहचान को हम सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत साझा जानकारी साझा करते समय हम सावधानी बरतें। सोशल मीडिया को सीखने का माध्यम बनाएं। यदि युवा चाहें तो दोस्तों, सोशल मीडिया को अपनी सफलता का हम साधन बना सकते हैं। नई भाषाएं सीखें, ऑनलाइन कोर्स करना, करियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना, प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीखना। याद रखना, सोशल मीडिया हमें वही देता है जो हमें उसे लेना चाहते हैं। हम कह सकते हैं सोशल मीडिया एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। यह हमारे हाथ में है कि हमें इसे अपने विकास का माध्यम बनाना या कुछ और करना है। तो ज़रूरी है हम इसे अपने विकास का माध्यम बनाएं और अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी का कारण ना बनाएं। अतः हम सोशल मीडिया के उपभोक्ता ना बने बल्कि उसके सकारात्मक निर्माता बने। सोच समझकर हम पोस्ट करें, जिम्मेदारी से करें, उपयोग सही तरह से करें और बनाएं डिजिटल दुनिया को बेहतर। इसका सतत प्रयास रहना चाहिए। यदि हम सब मिलकर सकारात्मकता, सत्य और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ अब हम कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं एक और गीत की ओर।

युवा साथियों, अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी भूल भुलैया, आवाज़ें श्रेय घोषाल और साथियों की थी। तो इसी के साथ अब आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवमंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। हम आपको याद दिला दें, शाम 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा खरीफ की फसलों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर नवनीत जरियाल और आपके साथ बातचीत भी करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे।

और हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 2231322 और एरिया कोड 01972। खरीफ फसलों से जुड़ा कोई भी आपका प्रश्न होगा तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30 पर, कार्यक्रम किसान वाणी।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति द्वारा असाधारण साहस, पराक्रम और राष्ट्र सेवा के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश के 6 वीर सपूतों को बधाई दी है। उन्होंने आज हमीरपुर में कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और छोटा राज्य होने के बावजूद देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए यहां के युवा हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल संबंधित सैनिकों और उनके परिवारों का ही नहीं बल्कि

0: पूरे प्रदेश का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के SDM प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी।
1: इसी मुद्दे को लेके यहाँ अपोजिट पार्टी जो थी वो माननीय हाईकोर्ट में गई है एंड हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली इसके ऑर्डर पे स्टे कर दिया है एंड इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 15th को रखी गई। सो उसके बाद ही इसमें क्या निर्णय आता है हाईकोर्ट का, अगर उसके बाद ही हम इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते। इसमें बेसिकली हमसे रिप्लाई फाइल करने को बोला है तो इसमें एक रिप्लाई हमारी तरफ से फाइल होगा। उस रिप्लाई के बाद फिर से डायरेक्शन क्या आती है, जैसी डायरेक्शन आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा।
0: हमीरपुर की उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने जिला के सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए एहतियात के तौर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपदा की आशंका वाले स्थान चिन्हित करने और मशीनरी व अन्य संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नालों और नालियों की सफाई करने व खतरनाक पेड़ों को हटाने को भी कहा। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकों और विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला स्तरीय सलाहकार व समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बैंकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। सिरमौर जिला की नाहन तहसील के ग्राम धौण के राजमिस्त्री गोपाल सिंह की दो बेटियों को बोर्ड की इस योजना के तहत 72,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इस राशि से इन दोनों बहनों ने स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
2: धोन गांव सिरमौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं और हमें श्रमिक कल्याण बोर्ड से 36,000 की दो किस्तें मिली है, जिससे मेरी पढ़ाई में काफी मदद हुई है और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है।
0: केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला के 4 युवाओं का चयन हुआ है। इनमें तमन्ना राहुल, दीपिका राणा और शगुन चौधरी शामिल हैं। ये युवा 14 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हर एक सफर कुछ ना कुछ सिखा देता है, मंजिल ना भी मिले तो रास्ता तो बिता ही देता है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। जी हाँ दोस्तों, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम और आप कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है बल्कि सफ़र को जारी रखना है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सफर सुहाने, गाने नए पुराने। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हमें कड़वा अनुभव दे जाती हैं और वो अनुभव ही हमारे लिए बहुत बड़ी सीख बनता है। ऐसे में उस सीख को ज़िंदगी में उपयोगी बनाना चाहिए, बल्कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। चलिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और सफर में मंजिलें क्या हैं रास्तों से पूछें, चलते चलते कारवां बन जाते हैं। रास्ते तो बहुत हैं मगर चलने का हुनर चाहिए जनाब।

इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी। आज इस कार्यक्रम में आज का विषय जो है वो है खरीफ की फसलों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत जरियाल और इनसे बातचीत करेंगी अनुराधा शर्मा। अगर श्रोताओं आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2231 22 और एरिया कोड है 01972। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: लाइफ ऑन इन कार्यक्रम किसान वाणी तुहांदे घर द्वार सुनने वाले सारे ही किसान कने बागवान भाई भैणां जो तुहांदी रेडियो दोस्त अनुराधा दा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। कदे हो किसान कने बागवान भाई भैणो, बिल्कुल ठीक ठाक जी। त जीअं तुहां जो पता कि अज जे असे जून महीने दा दूआ मंगलवार आ, कने दुए कने चौथे मंगलवार जो अहां दा जे असे जे कार्यक्रम रहंदा से रहंदा लाइव फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, तहां दे स्टूडियो च जे असे अज उपस्थित है डॉक्टर नवनीत जरियाल जी। ए जे असे कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर च जे असे मृदा साइंटिस्ट है। तो सारे तो पहले तो डॉक्टर साहब तुहां दा स्टूडियो च आए जी, असे स्वागत कर दे।
7: किसान वाणी दे सब श्रोताओं नमस्कार
6: जी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਗੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ ਸੇ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕਿ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਸਿਆ ਕ੍ਰਿਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਸਿਆ ਕ੍ਰਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਨਈ ਫਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਦਾ खरीफ दा मौसम जी ऐसे चल रहा था, इस मौसम च जी ऐसे खेतीबाड़ी जो लगाने ते पहले खेतरां च बीज बाने ते पहले केड़े केड़े जी ऐसे खेतीबाड़ी ते जुड़ी रहे जी ऐसे अहें कम कार करी सकें, ये सारी जानकारियां जी ऐसे अज

0: जी मक्की का खेत तक ने उस भी चीजें से दलहनी फसलों की भी बिजाई करनी, तो क्या एक सही तरीका आया कि नहीं आ?
1: सही तरीका, तरीका तो सही है पर टाइम गलत होंगे।
0: जी
1: साढ़े इतनी ज़्यादातर कोशिश ये करते जिस टाइम मक्की की बिजाई की तो उसके कन्ने कन्ने जो है वो माह की बिजाई करी देंगे,
0: जी
1: जबकि मक्की की बिजाई होनी थोड़ी जून महीने में और माह की बिजाई होनी थोड़ी जुलाई महीने में। जे
0: जी
1: तो दोनों की इकट्ठी बिजाई करी देंगे तो उस पौधे की बढ़वारता बड़ी ज़्यादा होंगी पर उस फुल कने फलियां जो है वो नहीं लगदियां। जे थोड़ी बहुत जी बाकी फलियां बचदियाँ उन्होंने दाने नहीं बनते
0: जी
1: तो ये काफ़ी
0: मतलब
1: समस्या कई
0: एक
1: आते किसान
0: टाइम
1: दे।
0: दा हाँ जो जी ऐसे बिल्कुल जी ऐसे ही चुनाव करने चाहिए ता ही जी ऐसे यहाँ दी फसला दी अच्छी पैदावार जी ऐसे आए
1: हाँ
0: सका
1: जी
0: ही।
1: उस विच हाँ ये कर सकते भी छलियां दी बिजाई जो वहाँ कतार लाइना विच करती हो तो उस विच जो है वो माँ मूंग या फिर रोंग जो बाहने ने तो उन्होंने वास्ते जगह खाली छड़ी दी है और जुलाई महीने उन्होंने बिजाई जो है वो लाइना विच अगले महीने कर दी है।
0: जी यानी कि कतारां ते कतारां दी दूरी जा जे ऐसे यहाँ फासला रखिए
1: हाँ जी
0: जी कि किस तरीके ने जे देखा भाई किसान कने बागवान भाई बहनों भाई डॉक्टर जरियाल हो रही जी ऐसे सारी गलबात जी ऐसे दसी ना, अगर तुम्हें भी जी ऐसे इससे संबंधित कोई भी जानकारी जी ऐसे लेना चाहें कि खरीफ के मौसम च जो भी फसलां लगती किस तरीके ने उन्हों की किस्म रहनी किस तरीके का जी ऐसे अहें खेतीबाड़ी से संबंधित कामकार करी सकें, तहां दा फोन नंबर आ 2231 ने एरिया कोड आ 0972 फोन करी सकें कि इससे संबंधित जानकारियां जी ऐसे ले सकें। तां डॉक्टर साहब गल करी अहें तो गल की अहें दलहनी फसलों की कि मक्की की मुख्य फसल की, हुण गल करनी अहां तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों से सारे तो पहले तहां जो ये दसना कि अगर कौन कौन है फसलां लगाए सकें कि जैली खेतर तैयार करना तो उसका जी ऐसे क्या क्या जी ऐसे तरीका रहना किस तरीके ने जी ऐसे खेतर तैयार करना कितनी खाद की मात्रा पानी कि खाद जी ऐसे खेतर च पानी चाहिए, अगर केंचुआ खाद भी अहें पाए रहे खेतर च तो क्या से बिल्कुल सही है इससे जी ऐसे जमीना की उर्वरा शक्ति जी ऐसे बनी रही रहो।
1: दाल वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलों बारे थोड़ा जहा दस दिंदा और दाल वाली फसलों दे दी फसलें ने जिन्हों खाद की बड़ी घट जरूरत होंगी है।
0: जी
1: इन्हों यह क्षमता होंगी भी हवा में नाइट्रोजन उपलब्ध होंगी उस ये अपनी जड़ों में सौखी ने अपनी जरूरत जो है वो पूरी करी सकते।
0: अवशोषित कर लें
1: हाँ
0: जी
1: जी तो इन्हों जो माह मूंग इन्हें शुरुआती विच 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इसने जो है वो जरूरत पूरी हो जाती
0: जी
1: शुरुआती सिर्फ बिजाई के टाइम दोबारा इन्हें पानी की लोड़ नहीं होती।
0: जी
1: उसके अलावा जो है वो 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश इतनी मात्रा जो बिजाई के टाइम में पाई दी है तो फसल की जो है वो सारी खुराक की जरूरत जो है वो पूरी हो जाती।
0: जी
1: तिलहन फसलों में तिलहन फसलों भी ऐसी फसल हैं जिन्हों की थोड़ी घट रही है जरूरत पोषक तत्वों की जियाँ इस सीजन हाड़ी मेन फसल रहनी तिल
0: जी
1: तिल तेल वाली फसलों में और वैरायटी हाड़ के इकलौती है रिकमेंडेड ये ब्रिजेश्वरी और जे खाद की गल करिए देसी खाद पाने के अलावा अलावा जी यानी गोबर की खाद तो पानी पानी है और उसके अलावा जे तो केमिकल खाद पानी है तो उस यूरिया जो है वो 30 किलो नाइट्रोजन और प्रति हेक्टेयर 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर और
0: जी
1: नाइट्रोजन जो है वो दलहन फसलों में छड़ी ने बाकी सारी फसलों में स्प्लिट कर दे
0: जी
1: स्प्लिट यानी वो वही वहाँ बंडी लेंदे जितना भी नाइट्रोजन जरूरत होंगी वो उस अलग अलग भागों में बंडी लेंदे ज़्यादातर यह होंगे कि अद्धा भाग जो है वहाँ बिजाई के टाइम पाए लेंदे और अद्धा भाग जो है वो लगभग 1 महीने बाद जिस टाइम हाड़ा पौधा थोड़ा तैयार हुई है और
0: थोड़ा
1: उसने
0: बड़ा हुई हो
1: उस बढ़वार लेनी है उस टाइम वो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी
0: दूजी
1: तो
0: मात्रा जी उस
1: आह
0: टाइम है
1: महीने
0: पाई
1: के बाद
0: सकते
1: देंदे
0: जी जी
1: तो लगभग सारी फसलों में इतना की रहा।
0: जी
1: और बीज की मात्रा तिल जलू वहाँ बन देता तिल में बीज की मात्रा बड़ा जरूरी हो जाता क्योंकि बीज जो है बड़ा छोटा रहता और बीज की मात्रा भी बड़ी घट है 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर 25 कनाल वास्ते जो है वो पूरा हो जाता और उस ताई कनाली के हिसाब से 400 स्क्वायर मीटर की गल करिए तो उस विच सिर्फ और सिर्फ 240 ग्राम बीज
0: जी
1: जो है वो उसकी जरूरत होंगी।
0: जी पर एक बार फिर जी ऐसे अपने सारे ही किसान कने बागवान भाई भैन जो है दसी देंगे कि अज का कार्यक्रम जी ऐसे यहाँ का लाइव फोन इन कार्यक्रम आ क्योंकि मंगलवार अधिका मंगलवार यानी कि महीने के दूसरे मंगलवार जी ऐसे यहाँ का जो भी प्रोग्राम किसान वाणी का रहा से लाइव फोन इन रहा कने अज यहाँ के स्टूडियो च उपस्थित है डॉक्टर नवनीत जरियाल जी कने इन्ह सौगी अहें गलबात करी रहे खरीफ के मौसम की सस्या क्रियाएं के बारे च कि खरीफ के मौसम च जो भी फसलां लगती किस तरीके ने तिना दी अहें सावधानियां वरती सकें क्या समय रहना कितने जी ऐसे बीज की मात्रा पानी खेतर किस तरीके ने तैयार करना।

0: खादी की क्या मात्रा जी ऐसे रहनी, ता किसान कने बागवान भाई बहनों भी इससे रिलेटेड तुम्हें भी अगर कोई जानकारी जी ऐसे लेना चाहें तो फोन करी सकते हैं। फोन नंबर आ 2222 कने एरिया कोड आ 0972। जी डॉक्टर साहब अहें गलबात कर रहे हैं तिलहनी फसलों के बारे में,
1: तो मुख्य फसल अहाँ कवर कर ली है जिस द तिल दी फसल, और दूसरी एक और फसल है जो हाड़े पिछले कुछ टाइम ते।
0: हेलो
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर। हाँ जी कौन सर बोला दे?
2: मेरा नाम प्रभात शर्मा है, मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: जी प्रभात शर्मा जी स्वागत कर दे कार्यक्रम च जी तुहां दा।
2: धन्यवाद। मेरा घर मैडम जी पालमपुर है, तो मेरे ना वहाँ पे जो जितने भी हमारे अमरूद के पेड़ है ना
0: जी जी,
2: उस सब में जैसे फल लगता है पकने पे आता तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका उसका मुझे पता करना है कि क्या रीजन हो सकता है, उसको कैसे हम।
1: चलो इस विच सबसे जड़ी समस्या होंगी फलों में लगने वाली फल मक्खी दी होंगी, और जड़ी इस विच सुंडियां वगैरह भी लगदियां है इसी करके लगदियां, और ज़्यादा यदा अटैक रहा हाड़ा बरसात का सीजन जिया शुरू होंगे इससे पहले पहले जो है यदा अटैक अजकल तो हम जो दिखने मिलना सारी सब्जियां और फलों में, तो इसका एक तरीका ये कर सकते अमरूद दी फसल है जिहड़ा साल में दो बारी हड़े फल दिंदा, तो अहाँ गर्मी का फल जिहड़ा है छड्डीने बरसात में जो उन्हें लगना यो अहाँ झाड़ी सकते, झाड़ने वास्ते क्या क्या बरती सकते, यूरिया का गोल बनाई ने छिड़काव करना पत्तियां कने जिहड़े फुल हुण पौधे उन्हें झाड़ी देंदे, तो है ही जिहड़े झड़े वो है अगले सीजन सर्दियों में आते जिस टाइम है फल मक्खी होंदी नहीं, और उस टाइम तो हाँ साफ सुथरा जो है फल ले सकते, उस टाइम फल भी जो है वो अच्छा रेट मिलता
0: जी, यानी कि अमरूद की फसल बरसात च नहीं लेकिन अगर अहें सर्दियों च लेंगे तो उसते फायदा भी मिलना कने फल मक्खी का नुकसान भी नहीं होना
2: जी।
0: बिल्कुल जी प्रभात जी, तुहां जो जानकारी मिली गई होनी अगर आज के विषय से रिलेटेड कुछ जानना चाहे तो जान ही सके।
1: सोयाबीन फसल बारे दसा दे, पिछले कुछ टाइम ते जो है वो हिमाचल विच सोयाबीन दा रकबा जे काफी बढ़ा दा
0: जी, डॉक्टर साहब रोकना चाहिए तुहां जो। हेलो
3: हां जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हां जी कौन मैडम बोला दे?
3: मैं मैडम जी वो बोला ही अमीरपुर बटते
0: जी जी जी जी, स्वागत है जी तुहां दा,
3: आपका भी बड़ा धन्यवाद जी।
0: हाँ जी क्या जानना चाहते फिर तुम्हें?
3: मैडम जी मेरा बड़ा अहम प्रश्न है, कने मैं बड़ी जागरूक है फसलों के बारे में, तो मैं तुम्हें एक बार तो रिपीट करी बैठे पर लेकिन मैं फिर जानना चाहती ना।
0: जी जी जरूर जानना जी, डॉक्टर साहब आई रहे आज तक ढेर सारी जानकारियां तुम्हें जो देनी
3: दिती भी ने, पर मेरा मन नहीं पर होया ना जी जरा उठे बैठे फिर मैं
0: जी जी जरूर तुम्हें अपना प्रश्न जी ऐसे रखा
3: सर इया जी कि एक तुहां सोयाबीन की गल करा दे फिर मूंगी दी कीती मां दी कीती तिलां दी कीती ता तुहां जरा रिपीट करी ने मैनूं जो दसा पे एक तां दस्सिया तुसीं पे मतलब मक्की दी बजाईए ते बाद बाणे कने कियां बाणे क्या इह जरा दस्सी
0: जी। जरूर
1: मक्की की बिजाई हाड़ी जून महीने हो जाती, वैसे तो कई बार हाड़े इतने जो बरसात थोड़ी लेट जाती तो हिमाचल में बिजाई जी है जुलाई में भी चली जाती, तो मक्की तो हाँ जून मई के लास्ट में जो भी बरखा हो जाती तो उत्थे ते बाहना शुरू कर देंगे तो जून महीना पूरा बाही सकते हैं, पर जे तो हाँ ये वास्ते जा दे दाल वाली फसलों वास्ते तो इन्हों का बाहने का टाइम एक तो लेने 15 जुलाई। हाँ जी तिलों में भी थोड़ा जहा दसना हाँ तिलों की भी बिजाई जी है अहाँ 15 जुलाई तक जो है वो करी सकते हैं, कने जितना अहाँ थोड़ा लेट लगाते तिल उतना एक बीमारी इस लगती फाइलोडी की हाड़े इतनी हिमाचल काफ़ी ज़्यादा वो लगती जिद पत्तिया के गुच्छे बनी आते, तो जितनी इसकी बिजाई अहाँ थोड़ा लेट कर गए उतना जो बीमारी घट लगती। बिजाइए 15 किलो नाइट्रोजन 15 किलो नाइट्रोजन के हिसाब लगभग थोड़ा ये 32 किलो जो है वो ये चाहिए यूरिया प्रति हेक्टेयर 25 कनाल वास्ते, तो उस हिसाब से हाँ अपना कितने कनाल खेत्र है उस हिसाब तो हाँ अपना
0: मतलब कटबद जी ऐसे करी सके
1: बिजाई दे टाइम तो हां ए मिट्टीया विच कन्ने रलाना और इस कन्ने जो है पोटाश कन्ने फास्फोरस उसकी भी जरूरत पौंदी 40 किलो पोटाश और 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश दी मात्रा जो है वो तिलन फसलों विच चाहिदी, तिलन विच तिल लायो। हां जी सोयाबीन दा ली आहा दसना हां
0: जी धन्यवाद जी।
1: सोयाबीन विच जियां फसलों बारे दसा हा हाड़े रिकमेंडेड वरायटियां तीन तीन चार इन जो अच्छा बीज हमें मिलता हिम सोया पालम सोया और हरा सोया
0: जी।

0: सात बजे हैं बाप
1: नमस्कार
0: सुनेंगे आकाशवाणी
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत

0: बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम। विषय है आर्थिक विकास। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज

0: प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को।

0: प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीज़ें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने।
1: जी
0: देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स है। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की। 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है। विद इन 4 ईयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हैं और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन

0: उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह
1: अभी
0: के
1: भी
0: कई एग्जाम्पल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात
1: ये
0: ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक
0: ये
1: लगाने की
0: बात
1: बात
0: ठीक
1: कर
0: है।
1: रहे हैं?
0: देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की अभी
0: बहुत ही
1: बात
0: वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट एआई। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को, अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर, तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल, और टेलीकॉम में एआई का रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी

0: सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
2: धन्यवाद।
1: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
2: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन से बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
2: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
2: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट

0: में जो हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा।
1: वो बैंक के खाते का क्या
0: हाँ, तो
1: करेंगे?
0: ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है, मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है?
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं चुनाव के बीच।

0: भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है।
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो
1: आप...
0: किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2000

0: 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: 7:45 होने को है, बस थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, कृपया अगले की प्रतीक्षा कीजिए।
7: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
8: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
7: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
8: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
10: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
9: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को, वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता, तकनीक आधारित कृषि परिवर्तन, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति का विकास करने और विश्वविद्यालय उद्योग साझेदारी को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। राज्यपाल आज डॉ YS परमार औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि समर्पित नेतृत्व, प्रतिबद्ध संकाय और विद्यार्थियों के सहयोग से

0: विश्वविद्यालय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आई भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत व पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय और सामूहिक मिशन है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास भी जरूरी है। पठानिया ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत मिशन की नींव स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रखी गई थी, जिसकी आज कल्पना की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सभी को संगठित होना होगा और इसमें कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पठानिया ने यह भी कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा और बेरोजगारी को खत्म करने के प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उनका निरीक्षण भी किया। अग्निहोत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ हैं और उनके कल्याण, सुरक्षा व सम्मान के लिए किया गया प्रयास सार्थक पहल है। रोहित ठाकुर आज शिमला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की निशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसी के शुभारंभ व वितरण के मौके पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 60 साल से अधिक की उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल शर्मा ने कहा कि इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई।
1: है महानाटी है, ये एक विशेष थीम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और हमारा थीम है माँ, माँ मदर्स अगेंस्ट अब्यूज। तो जैसे कि हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ हिंसा भी, असमानता भी, अन्याय भी हमें समाज में देखने को मिलता है, तो आज हम सब महिलाओं ने यहाँ पे ये संकल्प लिया।
0: ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन आज जहां गेटी थिएटर में पहाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहीं फ्लावर शो और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के मौके पर पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी अपने गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति की आज शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। विधायक व अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब मीडिया या सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता

0: भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगी।
1: एक तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी अनुशासन के मामले में जो है अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा सख्त होने वाली है। कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़ा व्यक्ति मीडिया में नहीं जाए, ना ही सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करेगा जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। वो सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है कि नीरज भारती जी को संगठन से पार्टी से 6 वर्ष के लिए जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए।
0: प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सचिव के पंत ने सभी जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आगामी मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आपदा और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने को कहा है। मुख्य सचिव आज शिमला में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के बीच बेहतर समन्वय, चेतावनी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला जिला के दत्तनगर क्षेत्र में बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है।
2: कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुखी सरकार का एक तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से दो दो महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
0: प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के एसडीएम प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉ ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहां हर रोज ओपीडी की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सिटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
3: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, अब से लेकर 8:45 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: नहीं, ओफो, ये कमबख्त दाढ़ी भी महंगाई की तरह रोज बरोज बढ़ती जाती है। अजीब इल्लत है, चाहे साबुन मिले ना मिले मुंह पर झाग मलते रहो। मैं कायर तो नहीं
1: अरे भाई पुष्प
0: मगर
1: जी,
0: मम
1: खिल रहे हो अर्थात अंदर विराज रहे हो क्या? बड़ा सन्नाटा लगा रखा है।
0: आइए दुख घोटन लाल जी, आइए पधारिए।
1: पधारते हैं पधारते हैं, तनिक चरण दासियों से मुक्ति पा लें अर्थात जूतियां उतार लें।
0: हो
1: लो भाई पधार गए, कहाँ रखें अर्थात तशरीफ? इधर ही कोने में रखते हैं, पंखे की शीतल वायु लगती रहेगी। हाँ भाई एक शुभ समाचार है।
0: कह डालिए पंडित जी, मन व्याकुल हो रहा है।
1: पहले यह बताओ कि तुम्हारी राशि क्या है?
0: हैं, ये क्या वस्तु होती है पंडित जी?
1: क्या वस्तु होती है? कव्वे की चोंच की भस्म होती है।
0: जी
1: राम राम, धर्म कर्म तुम नवयुवकों ने विक्रय करके भक्षण कर लिया है अर्थात बेच खाया है, जन्म राशि नहीं जानते। अच्छा तुम पहले मुख रोमों का खुरचन निपटा लो अर्थात दाढ़ियां बना लो तो बात करूं।
0: जी पंडित जी, मैं दाढ़ियां नहीं दाढ़ी बना रहा हूं, सिर्फ अपनी, मोहल्ले भर की नहीं।
1: काश मोहल्ले की बनाते तो धना लाभ तो होता। खैर भाई कहने का अर्थ यह है कि कई राशियां होती हैं, जैसे सिंह मीन कर्क कन्या तुला आदि, अर्थात शेर मछली मकड़ी लकड़ी लड़की तराजू वगैरह वगैरह। इनमें से तुम्हारी कौन सी
0: जी?
1: है?
0: ना मैं लड़की हूं, ना तराजू, ना शेर हूं, ना मछली, सिर्फ दिवाकर नाथ पुष्प हूं और बस।
1: काश तुम लड़की होते,
0: जी
1: मेरा तुम्हारा परिचय तो ना होता, मैं तुम्हारे लाभ की

0: सोच रहा हूँ और तुम परिहास फ्लाई कर रहे हो, अर्थात मजाक उड़ा रहे हो। जानते हो ये कपड़ा क्या वस्तु है?
1: जी वो जूता पोछने का चीथड़ा लगता है।
0: तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात खलास हो गई है। अरे बांगड़ू, या है राशिफल।
1: जी एक कौन सा फल?
0: राशिफल अर्थात राशि के अनुसार भविष्य का पूरा हाल। हमारे महापंडित ज्योतिषी ने 21 दिवस सिर्फ कद्दू खाकर बांचा है।
1: हाँ।
0: कागज की कमी के कारण उन्होंने इसे कपड़े पर छपवाया है। यदि हमें तुम्हारी राशि मालूम होती तो भविष्य बांच देते। ठहरो, पहले तुम्हारी राशि निकालते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किस वर्ष, किस महीने, किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट पर कहां और क्यों पैदा हुए?
1: है, है, है, पंडित जी, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। डेट ऑफ बर्थ पिताजी के पास थी, सो तो परलोकवासी होते गए, या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है जो दफ्तर में जमा है। बहरहाल इतना मुझे अवश्य याद है
0: क्या क्या
1: कि मैं पैदा अवश्य हुआ हूँ।
0: और नहीं तो क्या लैटरी में निकले थे? काश तुम पैदा ना हुए होते तो पृथ्वी का बोझ 200 पाउंड हल्का तो रहता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम किस मौसम में पैदा हुए?
1: जी वो बरसात में
0: है। बरसात में? शाबाश शाबाश, अर्थात अगस्त में। या तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे याद है पंडित जी कि मेरे पैदा होने से पूर्व जब पापा जी नर्स को बुलाने गए थे तो मम्मी ने कहा था कि छाता लेते जाइए, यानी बरसात थी।
0: भाई पुनः शाबाश। अब जरा ये भी बताओ कि वो अगस्त का कौन सा सप्ताह था जब तुम्हारे जन्म की दुर्घटना हुई थी?
1: जी पहला हफ्ता।
0: भाई पुनः पुनः शाबाश। अच्छा यह कैसे विश्वास हो कि वो अगस्त का पहला सप्ताह था?
1: पहले सप्ताह में तनख्वाह मिलती है पंडित जी। पापा के पास पैसे थे तभी तो नर्स बुलाने गए, वरना दाई पकड़ लाते। बात साफ है।
0: अरे मुझे भयंकर प्रसन्नता हुई, तुम कितने समझदार हो। अच्छा उस समय दिन था या रात थी?
1: जी रात थी। मेरे जन्म से पहले पापा छाते के साथ टॉर्च भी ले गए थे। दिन होता तो छड़ी ले जाते।
0: बस बस बस, बस पर्याप्त है। अगस्त पहला सप्ताह रात। भाई तुम्हारी राशि मीन है, अर्थात तुम मछली हो।
1: व्हाट डू यू मीन पंडित जी?
0: नाराज ना हो, नाराज ना हो, मैंने कोई अंग्रेजी वाला मीन थोड़ा ही कहा है। मीन यानी मछली, अर्थात फिश।
1: मैं मछली हूँ? कौन सी, रेहू, टेंगन, पढ़न या भी? धीरे बोलिए पंडित जी, पड़ोसियों को पता लग गया कि मैं मीन यानी मछली हूँ तो कांटिया डाल देंगे और पकाकर हड़प कर जाएंगे। अजी सुनती हो?
2: क्या है?
1: मैं मछली हूँ।
2: ठीक है, कांग्रेचुलेशन।
0: काश तुम गधे होते, गधे। अरे मैं तुम्हारा भविष्य बांचने जा रहा हूँ और तुम दादुर अर्थात मेंढक की नाई टर्रा रहे हो। शांत रहो।
1: जी मैं एकदम शांत हूँ। हाँ पंडित जी, इतना ध्यान रखिएगा कि कोई लॉटरी वॉटरी निकल रही हो तो बहुत आहिस्ता से कहिएगा, और अगर खर्च बढ़ने की संभावना हो तो वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दीजिएगा ताकि अंदर रसोई में ये जो मोहब्बत है वो भी सुन ले।
0: राम
1: वाची पंडित जी। मेरे माता पिता नहीं है, उन्हें क्यों बुलाते हो?
0: पक पक पर पूर्ण विराम रखो, अर्थात चुप रहो।
1: जी
0: सुनो
1: जी,
0: लिखा है इस मास मंगल शनि पर राशन पानी लेकर हावी है, अर्थात तुम्हें वो धन मिलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं।
1: हाय सच। अजी सुनती हो? वो जो हमारे मझले साले साहब मुझसे पिछले महीने पैसे उधार ले गए थे, अरे भाई पिक्चर देखने के लिए, वो धन लौट आएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो।
0: अरे महापंडित जी लिखते हैं कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अर्थात सेहत उत्तम रहेगी, शरीर में नई उमंगें पैदा होंगी और नया खून बनेगा।
1: ठहरो ठहरो पंडित जी, मेरे मसल्स फड़क रहे हैं, हैं, हैं, बाजू ऐश रहे हैं, जरा एक मुझे किंग कॉन्ग, कामा और सैमसन के पते देना, मैं तीनों को इकट्ठा पछाड़ कर नाम कमा लेना चाहता हूँ। हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं, हैं

0: अगले महीने सेहत ठीक रहे ना रहे।
1: शांत हो जाओ, शांत, उतावले मत बनो। जरा अपनी जन्मपत्री मंगा लो, तुम्हारे ग्रह तगड़े बन रहे हैं।
0: जन्मपत्री कहाँ से लाऊं?
1: कहाँ से लाऊं? जरा भीतर पत्नी से पूछो, शायद उनके पास हो।
0: वो कोई मेरे घर थोड़े ही पैदा हुई थी, जन्मपत्री उसके पास होगी। वो भी मेरे जन्म के 4 साल बाद जन्मी थी, काफी जूनियर है।
1: जूनियर है? खैर आगे सुनो, घर में नया मेहमान आएगा, काफी चहल पहल रहेगी
0: जी।
1: नया सामान खरीदोगे, सजावट बनी रहेगी, धूमधाम रहेगी।
0: पंडित जी जरा नजदीक खिसक आइए। क्या क्या मेरे लिए विवाह का जुगाड़ बन रहा है? है? लड़की कैसी है? कहाँ तक पढ़ी है? किसी एक्ट्रेस से मिलती जुलती है कि नहीं?
1: जमाखोर, क्या एक पत्नी पर्याप्त नहीं? शिव शिव शिव। आगे सुनो बंधु, किन्हीं कारणों से तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, सैकड़ों के बीच में नाम ऊंचा होगा।
0: हाय पंडित जी, है अपने चरण दीजिए चरण, उनकी गंदगी साबुन से धोकर अपने माथे लगाऊंगा। आप धन्य हो पंडित जी,
1: सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, अर्थात जीते रहो। हाँ भाई, अंत में लिखा है कि इस मास की तारीख 5, 13 और 29 से सावधान रहना।
0: 5 और 13 तो बीत गई पंडित जी, बस 29 आज है। मैं ओढ़कर मच्छरदानी में लेट जाता हूँ, सुरक्षित रहूंगा।
1: अच्छा तो अब चले, कई जिजमानों की अंतिम क्रिया में जाना है
0: जी।
1: वैसे हमें तुम्हारा भी काफी ख्याल है।
0: प्रणाम पंडित जी।
1: आयुष्मान भव।
0: पंडित जी, वो छाता मेरा है जिसे आप ले जा रहे हैं।
1: श्याम रंग देखकर ब्रह्म हो गया, हमारा छाता भी काला है।
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
0: अजी मैंने कहा कृपया सुनती हो?
3: इतनी ऊंची आवाज तो पड़ोसी तक सुन रहे हैं। आज्ञा दीजिए, बंदी हाजिर है।
0: हाय, आज तुम किस कदर मुगलिया हो रही हो। जाने बहार, कहना ये है कि मैं मछली हूँ।
3: तो क्या मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दूँ?
0: देखो जी, मजाक ना करो, मेरी राशि मछली है। जरा मेरी छपी हुई रचनाओं वाले अखबार तो लाना, मैं आज ही शुभ मुहूर्त में संकलन छपवाने का प्रोग्राम बनाता हूँ।
3: अखबार?
0: हाँ।
3: वे तो सब मैंने रद्दी में बेच डाले।
0: क्या, रद्दी में बेच डाले? मर गया, सारी रचनाएं गई। पंडित ठीक कहता था कि धन लाभ होगा, हो गया।
3: I'm sorry, मुझे क्या मालूम था कि उनमें आपकी रचनाएं हैं। हाँ, ये चिट्ठी है आपकी।
0: चिट्ठी? कोर्ट समन, मकान खाली करने का मुकदमा।
3: क्या?
0: आज ही पेशी है, सैकड़ों के बीच नाम पुकारा जाएगा, दिवाकर नाथ कोई हाजिर है। पंडित सच कहता था कि सैकड़ों के बीच नाम ऊंचा उठेगा।
3: अरे तो निराश क्यों होते हो, एक शुभ समाचार भी है। आज ही शाम की गाड़ी से मेरे बड़े भैया 7 बच्चों और भाभी सहित आ रहे हैं, खूब चहल पहल रहेगी।
0: और बच्चे क्रॉकरी तोड़ेंगे, मैं नई खरीदूंगा, काफी धूमधाम मचेगी। अरे भगवान, पंडित ठीक कहता था। ओह, मैं मर क्या? गाड़ का दर्द बढ़ रहा है।
3: अरे आपका तो दाहिनी ओर का चेहरा काफी सूज गया।
0: पंडित ठीक कहता था, सेहत बढ़ेगी, मेरे दाहिने गाल की सेहत बढ़ती जा रही है, शरीर में नया खून बनेगा, जरा 2-4 बोतल खून भी चढ़वा दो।
3: महीने के आखिर 29 तारीख को डॉक्टर भी कैसे बुलाया जाए, फीस भी तो देनी होगी।
0: पंडित ये भी ठीक कहता था, 29 तारीख से सावधान रहना। हाय पंडित, तू मुझे मीन यानी मछली बनाकर कांटे में फंस गया। ओहो, काश मैं रुक कर पैदा हुआ होता तो सिंह यानी शेर होता, लेकिन मछली, खैर मैं मछली तो नहीं मगर घुटन लाल, जब से देखा तुझको मुझको स्विमिंग भी आ गई, मैं मछली तो नहीं।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह के गाए यारियां फिल्म के इस गाने के साथ। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है।

आइए सुनते हैं के और शिल्पा राव की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म का गाना। गीत अन्विता दत्त गुप्तन का है, संगीत विशाल शेखर का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का गाना, गीत नीलेश मिश्रा का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए एआर रहमान की आवाज़ में हाईवे फिल्म का ये गाना। इसे लिखा है इशात कामिल ने, संगीत एआर रहमान का है।

0: ये है विविध।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक और 9 बजे आप सुनेंगे News@9। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
3: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
4: The amount of time we have spent
5: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
9: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength.
11: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
9: Dr. Jayashankar

0: rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 हैं, आपसे लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

कुछ तो बोलो, दिल ना छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस प्यार।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना दिल दे के देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एस टी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए बहुत

असित भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे

एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नज़र पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज़ फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुनवा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफ़ी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे।

करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी राम चंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिव राम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज़्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफ़ी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम साहित्य जगत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सबसे पहले रविदत्त शर्मा का कविता पाठ।
1: आज अपनी दो तीन कविताएं लेकर आपके सामने आया हूं। ये मेरी कविता पहाड़ी में लिखी गई है, अपने गांव के प्रति अपने प्यार को दर्शाया है। तन मेरे पुरखां जिन्हां गांव ए बसाया, दुख सुख सांझ पाई प्यार बरसाया। छैल छैल रुआज बनाए, तिथ मेले त्योहार लगाए, अन उगाने जो खेत बनाए, उचियां रिड़ियां पिपड़ू लाए, पानी री बौड़ियां चलने रस्ता बनाया, तन मेरे पुरखां जिन्हें गांव ए बसाया। छैल छैल गबरू इथी बांकियां नारां, खेतां च सोना उगाया जिमीदारां, आले दुआले गांव रे नाड़ू बगदे, उचियां रिड़ियां डंगरे चुगदे, नजारे दिखी दिखी मेरा मन भरमाया, तन मेरे पुरखां जिन्हें ये गांव बसाया। सड़कां रे मोड़ें इथू बस सुझे जांदी, पीपड़ू री छां तने ठंड बड़ी पांदी, गांवां रे सिरे बाबे दा मंदर बनाया, तन मेरे पुरखां जिन्हें ये गांव।

दूसरी कविता का शीर्षक है आओ देश का मान बढ़ाएं। आओ देश का मान बढ़ाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं, भिन्नता की इस बगियन में एकता का फूल खिलाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं। कृषक खेत में अन्न उगाए, सारा देश पेट भर खाए, कृषक खेत में अन्न उगाए, सारा देश पेट भर खाए, सिर पर छत हो तन पर कपड़ा, गुर्बत कहीं नजर ना आए, आओ देश का मान बढ़ाएं। फिर हर पल ईद दिवाली होगी, मिलकर गीत खुशी के गाएं,

देश का मान बढ़ाएं। श्रमिक श्रम से कतराता नहीं, काम कठिन हो उकताता नहीं, भवन निर्माता झोंपड़ी में रात गुजारे, ऊंच नीच का भाव सताता नहीं, क्यों ना छोटे बड़े का भेद मिटाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं। सैनिक देश की सरहद पर डटा है, विषम परिस्थिति में भी पीछे नहीं हटा है, कश्मीर की घाटी में, राजस्थान की तपती रेत में, जो देश के लिए हर क्षण समर्पित, क्यों ना उस पे नाज उठाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं। देश में रंगों की बहारें लाइए, आओ भारत का परचम लहराइए, रोपित करो देशभक्ति बच्चों में और संस्कारों की घुट्टी पिलाइए, आलस छोड़ कदम से कदम मिलाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं, आओ देश का मान बढ़ाएं। मेरी छोटी सी एक गजल है, अभिलंब चलता रहा जिंदगी का कारवां, अभिलंब चलता रहा जिंदगी का कारवां, कब चला कहाँ चला क्या पता, पथरीली संकरी पगडंडी और दूर तक मरुस्थल, पंख थे या पांव, कब उड़ा कब चला क्या पता, विरक्ति लोलुपता चंचलता या खामोशी, बरदानी अभिशप्त बुरा या भला क्या पता, प्रकृति का समीप्य या संसारिक पास थे, आस का दीपक कब जला कब बुझा क्या पता। अभिलंब चलता रहा जिंदगी का कारवां, अभिलंब चलता रहा जिंदगी का कारवां, कब चला कहाँ चला क्या पता। नमस्कार।

0: साहित्य जगत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं पी शर्मा का कविता पाठ।
1: शीर्षक है मेरे ग्राइंदे लोक। बड़े भोले थे मेरे ग्राइंदे लोक, सीधे साधे थे मेरे ग्राइंदे लोक, उन बदली गए मेरे ग्राइंदे लोक, रास्ता भटकी गए मेरे ग्राइंदे लोक, रीतां भुली गए मेरे ग्राइंदे लोक, कुरीतां सीखी गए मेरे ग्राइंदे लोक। कुत्थू गए से पुराने लोग, कुत्थू गए से पुराने लोग, कुत्थू गईयां से सच्चियां गल्लां, कुत्थू गए से जुंगले छिक्के, कुत्थू गईयां से देसी अल्लां। अज पुराने विरसे जो हुण भुली गए मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग। ट्रैक्टरां पावर टिलरां ने करदे करसाणी, ड्रिपिंग स्कीमां ने बरसांदे जमीनां च पाणी, कम्में करदे मोबाइले सुणदे मेरे ग्राएं दे लोग, सीधे साधे थे मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग। अज सैलां दियां आवादार मकानां छड्डी, नेरियां ठंडियां ओवरियां कन्नै वाना छड्डी, पक्कियां कोठियां च रहंदे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण बदली गे मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग। दुद्धे देहियें दे बड़े खुराकी थे ग्राएं दे लोग, खांदे थे खुराकां देसी नहीं लगदे थे रोग, अज पैकां दे दुद्धे पीया दे मेरे ग्राएं दे लोग, रस्ता भटकी गे मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े मेहनती थे मेरे ग्राएं दे लोग, डंगरियां पालना हुण छड्डी बैठे मेरे ग्राएं दे लोग, फसलां च घा तालना छड्डी बैठे मेरे ग्राएं दे लोग, दवाई छड़काई ने घा फूकदे हुण मेरे ग्राएं दे लोग, दो हथ जोड़ी ने नमस्ते थे करदे, दो हथ जोड़ी ने नमस्ते थे करदे, बड्डियां जो पैरी पौना करदे थे रस्ते चलदे, अज बाय बाय टाटा करदे मेरे ग्राएं दे लोग, रीतां भुली गए मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण चलाक होई गए मेरे ग्राएं दे लोग, हुण चलाक होई गए मेरे ग्राएं दे लोग, हुण पंध पंदोटुआं बिन्नियां भुली करी सोफियां पर बहिंदे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण पंध पंदोटुआं बिन्नियां भुली करी सोफियां पर बहिंदे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण बंदरियां खंदोलुआं खिंदा छड्डी करी गुदलियां गद्दियां पर सौंदे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण गुदलियां गद्दियां पर सौंदे मेरे ग्राएं दे लोग, प्रभात हुण सैरिये होई गे मेरे ग्राएं दे लोग, प्रभात हुण सैरिये होई गे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण बड़े बदली गए मेरे ग्राएं दे लोग, हुण ग्राएं जोगे नहीं रहे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण ग्राएं जोगे नहीं रहे मेरे ग्राएं दे लोग, बड़े भोले थे मेरे ग्राएं दे लोग, सीधे साधे थे मेरे ग्राएं दे लोग, हुण बदली गए मेरे ग्राएं दे लोग, रीतां भुली गए मेरे ग्राएं दे लोग। अगली कविता है सच्ची गल। पखला माणू खौदला पानी, पखला माणू खौदला पानी, नी टपना ना प्रीत लगानी, पखला माणू खौदला पानी, नी टपना ना प्रीत लगानी, जे टपना तां टोई टोई प्रीत लगानी लोई लोई, जे

चांदनी रात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। प्यार के तराने जब दिलों में गूंजने लगते हैं तो बस चारों तरफ प्यार ही प्यार डोलने लगता है।

चांदनी रातें ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। जब दिल में इकरार ये प्यार उतर जाए तो बस बात ही निराली हो जाती है।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। जब दिल किसी का हो जाता है तो दिल यूं ही प्यार के तराने गुनगुनाने लगता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें हैं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी